आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: गुलजार नार सिंगार करुण खूब नटली अहो गुलजार नार सिंगार करुण खूब नटली
1: चले चमक चमक।

0: वक्त को क्यों खोता है ये गुलाबी मौसम है, वक्त को क्यों खोता है।
1: जिस्म हो जब बाहों में दर्द उड़न छू होता है।
0: प्यास मचल कर बोली इश्क को मारो गोली,
1: प्यास मचल कर बोली इश्क को मारो गोली।

0: आई नहीं वो
1: आएगी।
0: नरेश कैसे लग रहे हैं
1: आज? उस पार्टी में कत्लेआम हो जाएगा, ऐसी लग रही हो।
0: कुछ घबराहट से हो रही है।
1: वजह क्या है?

0: हेलो, रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी।
1: हेलो फरमाइश मैडम।
0: हाँ बोला ना।
1: फरमाइश देख चुकी।
0: हाँ हाँ
1: टीचर का नाम जिन्हें की रहा।
0: ओके
1: आने जो उसके आई बार वाली की तरफ।
0: थैंक यू।

0: क्या अंग्रेजी बोलता है, सीधा साधा बोल।
1: अगर फिर कभी तुम फैक्ट्री में कदम रखा तो उनको बॉयलर में डाल देगा, तुम लोग पर इंजन चला देगा।
0: देखो काय लोग, देखो देखो तुम्हारा, देखो वो हरामखोर मुझे लात जूते से मारता रहा और तुम आकर खड़े हो गए। बस चुपचाप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन वो तुम लोगों को भी

0: नहीं सुनता रे।
1: सोता है, बहुत जागा है ना।
0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे।

0: भोले वाले ललुआ, भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग जा भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, हरेगा विदेशी बाबू।

0: लेडीज कट्टा, स्त्रियांचं भावविश्व उलगडून दाखवणारा आपला विशेष कार्यक्रम, ज्याचं नाव आहे लेडीज कट्टा, सादर करते प्रियंका घरटे। तेव्हा ऐकायला विसरू नका, दर बुधवारी दुपारी 1 वाजता लेडीज कट्टा।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है।

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।

दुनिया ये मस्त मस्त बिन के जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने।

है माँ, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए, जवानी आई मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

0: कशी बंसिया बजाई श्यामा सुध बिस राई तररे
1: भूल गया यार
0: तररे ऊंचे सुर में गाए जा मस्ती में लहराए जा दुनिया

दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा।